मेरी बड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

फतेहे। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गरीब नवाज दया दे दाते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद दा आनंद माण।

0: राग मलार दी रंभता करके पहले पातशाह मेरे गुरु नानक साहब सचे पातशाह
1: चौपदे कर पहला
0: चार पदियां वाला शब्द पहले कर सुरताल दे विच विद्वान लिखते जदों मारे लाहौर जिला टप के मिंट गुमरी नूं जा रहे सी ना उत्थे रस्ते दे विच मारे साहब पांच चार थावां ते रुके ते ओह भागे बिन भागां वाले जी इस तरह दे सी ओह मारे नूं बहन ना देण जिथे मारे जाके बैठ के सत्संग करन उठा दिया कर कि बाबा इतों चल जा बाबा इतों चल जा ते मारे साहब जी अरदास कर दिती। ये साखी तुसी बड़ी वार सुनी होगी पर अज आप करम वाले क्योंकि कुछ विद्वाना ने लिखिया भी जदों मारे ने आरंभ किया मलार राग ते उस जगह ते मारे साहब ने खेड वरताई कि मारे साहब जी उन्होंने कहिंदे वसदे रहो भला होवे। अगले नगरां च गए ते उन्होंने बड़ा कीर्तन सुनिया बड़ी भावना नाल प्यार कीता जिस तरह अज आप संगतां फुलां दी वरखा करदे हो आओ भगत संगत विच रब वसदा जी कोई सिंह जोड़े झाड़दा है कोई तवाई भावना है उन्हां बड़ी सेवा कीती कीर्तन भी रूह नाल सुनिया भाई मरदाना जी नूं वस्त्र आदिक प्यार दिता भेटा दिती ते महाराज सच्चे पातशाह ते चलो अकाल पुरख है वो तो अज तक जिक्र नहीं आता कदे भी विद्वान किसी ने किया हो कि महाराज साहब ने किसी तो कुछ मंगया हो क्योंकि वह तो दाता है वह तो सारिया नूं देण वाला ते उत्थे महाराज अरदास कर दिती कि हे करतार अकाल पुरख वाहगुरु ये नगर उजड़ जाए ते भाई मरदाना जी हस पए कहिंदे महाराज समझ को नहीं लगती जिन्हां ने धक्के मारे आ कोल बोल कबोल कहा उन्हां नूं तुसीं कहा है वह वसदे रहो भला होवे ते जिन्हां ने इन्नी सेवा कीती कीर्तन कथा सुनिया इन्हां नूं जाड़ता ते मारे कहिंदे भाई मरदाना जी जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत रंग कहिंदे भाई जो हुंदा चंगा महाराज मैनू भी खोल के दस दिओ पातशाह कहिंदे इन्हां नूं अरदास तां कीती आ वी वसदे रहो भला क्योंकि जे ए उजड़े ते जिथे जाणगे अपने अरगे होर पैदा करनगे संगत ही है ना बंदे दी जिहो जी हो जे जे बच्चा तुहाडा तुहाडी धी संगत च आऊगी वह दस्तार बनूंगा दाड़ा रखू धी चुन्नी लवेगी सवेरे नितनेम करेगी माँ प्यो दे पैरियां हत्थ ते जे माड़ी संगत विच बच्चे पै गए ते फिर तो जो हालात है वह दिस नहीं दे आ इस तरह मारे सच्चे पातशाह कृपा करके कहिंदे जिथे हैगे वसदे रहना ते आ चंगे बंदे तां उजाड़े आ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ 25-30 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗਰਿਓ ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਭਰਦਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ ਅਰ ਧਿਆਇਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਰਾਗ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਠੰਡਕ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ

श्रावक सुध समूह सिद्धांक देख फिर घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ति के माते मतंग जरे जड़ संग अनुपूतंग सुरंग सवारे कोर तुरंग कुरंग से कूदत कौन के गौन को जात निवारे पारी पूजान के भू बलि वशीष न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नंग ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपत कौन गए नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ संयम नेम अनेक भी सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौन आहार जति धार सब ऐसो विचार हजार दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबा सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लाएंगे तोर अरिद मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरिया रवचारे सार की धार वछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़न हार सुबाता नीचक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक साचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जा सत्र सभा अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादिव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान जादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपद अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रथ है पग ते नर फेर

कह भयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो। नाथ फिर सा समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो। बास कियो विख्यान सु बैठ गए ऐसे यारे सुबैद बितायो। साज कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहुल पाहन पूत धरियो सिर काहुल लिंग रे लटकायो। काहुल खियो हरा वाची दिशा महे काहु पचाह कुस

तीन अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूपृत भांत चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल करम विहीन सब।

चार वक्त बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड ज्ञांड ते ब्रह्मांड कीने सु चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार के ब्रह्म विषण विचार के राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सेंद बिन नगेंद्र गए मच्छ कच्छ फनेन्द्र गई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद ओमकार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम।

एक ब्रह्म स्वरूप कौ नीत राज अनूप कौ रोग शोक विहीन कौ एक भगत अधीन कौ रंग राजकुमार कौ वेद व्यास अवतार कई कई ब्रह्म वेद रटांत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहु संन्यास कौ

हरि गुफे हरि शिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमि हरि जमा हरि अलेघ हरि अभेघ हरि अदोघ हरि अद्वैघ हरि अकाल हरि अपाल हरि अशेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि मंत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अवर्म हरि अकर्म हरि अजा हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अशेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि तदस्तुहि नदस्तुहि नदिस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि पजस्तुअंग रटस्तुअंग ठटस्तुअंग जिमेतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभैतुहि अशुतुहि अशैतुहि जतस्तुहि प्रतस्तुहि गतस्तुहि।

उद्वन जारी चित चौनसप दूधधारी पौन के आरिशु भुजंग जानियत है। तृण के वशयादन लोभ के तयत तो गौवन के यया भृग भैया मानियत है। नव की उडयता है पंछी की बढ़या दे बगला बिड़ा भृग ध्यान ठानियत है। जेत बड़े ज्ञानी तेनो जानवे बखानी ना है। ऐसे ना प्रपंच मन पुहल आनियत है। भूम के बसयाता है भूजरे के जया कह नव की उडया सूची रया का बखानी है। फल के बछयाता है बांदरी के जया कह आदित प्रिया ते तो बहुत का पछानिया। जल के तरह को गंगेरी से कहत जाग आके बछया तो चकोर सम्मानिया। सूरज सिवैयाता है कौल की बड़ाई जीत चंद्रमा सिवैया को कवि का पहचानिया। नारायण कश मछी तिंदुआ कहत सब कौल नव कौल ये ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेनचारी जी की किस नाम का महंत लहियत है। माधव भवर टेरु कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूढ़ पीटत ना गूढ़ता गो भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बरिसाल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटाधारी सती साजे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास।

नाचत फिरत मोर वादर करत घोर दामनी अनेक भाव करी हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज, इंद्र सुना राज भव भूम को भरत है। शिव से तपसी आज ब्रह्मा से ना बेचारी, सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस किया दिन, सदा जुगन की चौकड़ी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा बिचन के तिवेद और पुराण के तिथिमृत समूहन के होय होय बिते है। मोनिनी बदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल भस भय है। पीर और पिकावर के ते गणना परत ते भूम ही ते हुए का फेर भूम ही मिले है। जोगी यदि ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी, शत्र की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरस देत, बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कत क्षेत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिले सर दुर्योधन से भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। शिष दे कर अनेक तूपति कपट भेद, कोस दिया अनेक दानी बाबत है। शीत का कहा भयो मन जो पकड़त अनेक दंड, सूतना दंडौत अष्टांग अथ तीस का भयो रुग जो पटार रहे और मुख, मानते न मुंड ने हो रायो आदेश को। कामना अधीन सदा दाम न प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीत पट कट जग कान में खजूरा धत, मुंड छटकत मित्र पुत्र होंगे शोक सो। आको चरैया फल फूल को बछया, सदा बन को भ्रमया और दूसरों ना भोग सौ। कहा भयो भेड़ जो घसत शीत वृक्षन सौ, माटी को बछया बोल पूछ ली जा जोग सौ। कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण, एक भावना भीन कैसे भेट पार लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर, सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाए ठाटे सदा बंद में रहत वृक्ष, फूक फूक पाव भूम त्रावग धरत है। पहन अनेक जुग एक ठोर बात करे, काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के बीन महादान में ना हो जा लीन, भावना यकीन कैसे भी कहतरत है। जैसे एक स्वांगी कहो जोगी या बैरागी बने, कबू सन्यासी वेद बन कह दिखावई। कहो पौन हरि को बैठे लाए तारी, कहो लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई। कहो ब्रह्मचारी कहो हाथ पर लगाए बारी, कहो दंडधारी हो लोगन प्रमावई। कामना दीन परियो नाचत है नाचन सु, ज्ञान के वीर गत ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे शीतकाल, कुंचर अगद अनेक दा पुकार ही। का भयो जो कल वत्र लियो कांसी भी, चीर चीर चोरटा कुठारन स्वामार ही। का भयो फांसी डार बुड़ो जड़ गंग धार, धार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना बीन गते ब्रह्म को कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप से तहे से जो पाइय तापना, तापना अनेक तन अहल सहत है। जाप के किए तो जो पायत अजाप देव, पूतना सदीव तू ही उचरत है। नब की उडित जो नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल करत है। आग में जरित गत राण की परत कर, पताल के बासी क्यों भुजंग ना करत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को रोगी पायो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमान गो। हिंदू तुरक रास जी माम सफी, मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई राय करही, मोई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्मान गो। एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसी सुई पूजा निवाजोई, मानस सब एक पै अनेक को ब्रह्माव है। देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू, नारे नारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान।

अधिकन का कूट आग उठे न्यारे न्यारे होएगा फिर आग में मिलाएंगी। जैसे एक दूर से अन्य दूर पूरत है दूर के कन का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नाते तरंग कूट उपजत है पान के तरंग सब पानी कहाएंगे। तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट हुए ताहिते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कच्छ मच्छ केते उनका करत भच्छ केते अच्छ वच्छ हुए सब पच्छ उड़ जाएंगे। केतना बीज आज पच्छ को करेंगे पच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहा काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज यु तेज मैं सीधा तेज लीन ताहि दे उपज सब ताहि मैं समाएंगे। कुकत फिरत के

विनाशी परेयं परापरम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेयंग स नेहंग स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं नरूपं नरेखं नलोभं नचोभं अभूतं अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदैवं सदा सर्व सर्वत्र तनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनी अशय आदव अजुहं न जन्मं न मरणं न वरणं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विखादं अशेदं अभेदं अकर्मं अकालं अखंडं अभंडं प्रचंडं अपालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न परमं न पायं न रूपं न कूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न पेदं न परमं सदैवं सदा सिद्ध वृद्धं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निर्युक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अशयाद अविक्ते अथापि विभुक्तं अशयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं।

ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहो कांज के मंज के परम पूले कहो रंग के राज के धर्म अलूले कहो देश के पेश के धर्म धामे कहो राज के साज के वाजता में कहो अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहो सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहो अंग के रंग के संग दे के कहो जंग के रंग पेखे कहो भरम के करम के हरम जाने कहु धर्म के कर्म के परम माने कहु चार चेष्टा कहु चित्र रूपं कहु परम प्रज्ञा कहु सर्व भूपं कहु नेह गृह कहु देह दुगं कहु औषधि रोग के शोक सोखं कहु देव विद्या कहु दैतवाणी कहु यक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सात्की तामसी हो कहु योग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु यक्ष विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पुण्या कहु वेद विद्या कहु व्योम वाणी कहु कोकी गाप कथा कहानी कहु अदर सारंग कहु भद्र रूपं कहु मधुर वाणी कहु शुद्र स्वरूपं कौ वेद विद्या कौ काव्य रूपं कौ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कौ परम पुराण कौ पार पावा कौ बैठ कुरान के गीत गावा कहु शोध से गंग कहु ब्रह्म धर्म कहु वृद्धावस्था कहु बाल कर्मं कहु ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहु नेह देहं कहु त्याग गृहं कहु जोग भोगं कहु रोग रागं कहु रोग हर्ता कहु भोग त्यागं कहु राजताजं कहु राजरीतं कहु पूर्ण प्रज्ञा कहु परम प्रीतं कहु आरवी तोर की पारसी हो कहु पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहु देश भाग्या कहु देववाणी कहु राज विद्या कहु राजधानी कहु मंत्र विद्या कहु तंत्र सारं कहु यंत्र कहु शस्त्र तारं कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरेज पाख्या कहु वेद रीतं कहु नृत्य विद्या कहु नागबानी कहु गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो।

जय नेत नेत उचरंत बेद जय अलग रूप कथत कतेब जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतुल जय ध्यान काज मुंजन मह अनंत कई कलप जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा संत कई कलप एक आसन वितंत के जतन जोग विद्या विचार साधन तद पावत न पार कई उर्द भाव देशन ब्रह्मांत कई उर्द मध्य पावक झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई को कथत कतिव कई अगन होत्र कई पवन आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र पाश नई तदव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत को वेद रीत यज्ञ करम को अगन होत्र को तीरत हम कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचारणी नैगतास पायत ना पार कई तीरथ तीरथ भ्रम शुभ हरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचारणी तदप्तास पायत ना पार कौ राज रीत कौ जोग धर्म कई स्मृत शास्त्र उचरत सो करम निवली आद करम कौ हस्तदान कौ अश्वमेध मको बखान कौ करत ब्रह्म विद्या विचार कौ जोगरी कौ बिरदचार कौ करत जक्ष गंधर्व गान कौ धूप दीप कहु अर्घदान कौ पितृ करम कौ वेद रीत कौ नृत्य नाच कौ गान गीत कौ करत शास्त्र से

जलपवा कैल कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकांत जाप कई जपत जोग कल्पन प्रजयंत नहीं तदपतास पायत ना अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्टि देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भो करत हो।

जयजंपो युगण जुअजुअंग भय कंपो मेर पयाल भुअंग तप्ताप सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अशेद अशियंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रश्यंग देव अदेव बरंग।

सुखं जय रोग न सो न पो कुं जय खेद न भेद न शेद शयं जय जात न पात न मात पितं जी रचयं क्षत्रि क्षत्र छितं जय राग न रेग न रोग फणं जय द्वैग न दाग न दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मांड रचियो जस्चार करी नव खंड सचियो रजतावस्तेज अतेज कियो अनुभव पद आ प्रचांड लियो श्री सिंधर बिंद न गिंद न गंग श्री जक्ष गंध्र फणेन्द्र भुजं रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज से तद उत्त भुजंग कई देव अदेव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रवजात न पात न ज्योत युतंग जय तात न मात न प्रहत सुतंग जय रोग न सोग न पुअंग जय जंप है किन्नर जाच जुअंग।

देव पंज पंज जानिया अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदेव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अक्षेज तेज मानिया सदेव सिद्ध सुधता प्रताप पत्र जानिया न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है दुख अदाग अदग है अभूत अभ्रमा भीग है न तात मात जात है न पाच है न वरण है अधिक अशेक अभीक है सदैव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेख विश्व परम है जिमी जमान की विख्या सदैव करम भरम है अद्वैग है अभीक है अलेखनाथ जानिए सदैव सर्व ठौर में विशेख का विशेख आन मानिए न यंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अपुराण नीत नीत कै बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बता।

රංකහන මානහන මෝතන සාගහන සංකහ නජචහන ගන්ද්‍රභ නනරහන නරහ නචූරහන ශාහුහ නශාහකු කුමාරහ නනේහන ගේහන දේහකු බනාවහ නශලහන ශෙද්‍රහ නශලකු මිලාවහ නජන්ත්‍රහන මන්ත්‍රහන තන්ත්‍රකු සරූපහ නරාගහන රංගහ නරේගහන රූපහ न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न शल है न क्षेत्र है न शय को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है भेक है न तात है न माता है ख्याल अखंड रूप है अशेद है वेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न पेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है न सीत है न सूच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नरको स्वरूप है न शैल है न क्षेत्र है न क्षेत्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न भेक है न द्वी है न द्रोह है न काल है न बाल है सजीव दयाल रूप है अगंज है अपंज है अभर्म है अभूत है अशेद शेद है सदा अगंज गंज गंज है अभूत अभेक है बली

तीरथ जात्र न देव पूजा गोर के ना अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया जह जूत शेष नाम संस्पन्न नेत पूरण होत सोध सोध हटे सभा सोर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त के महाकव गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सभु मेल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो।

नेह गेना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र चेहना वरण जागो जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनुभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आद देव अपाल दीन बंद प्रवीण श्रीव सर्व को करता बरन चेहना चक्र जागो चक्र चेहन अकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेखना वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को भरण दुष्ट गंडन चतुर पंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि करता।

धर्म ज्ञान करम जित कीन तौन पसार देव अदेव गंधर्व किंदर मच्छ कच्छ अपार भूम अकाल जले तले मैं मानी है यह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरता श्रेष्ठ कर दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मैत्र पालक शत्रुघालक दीन दयाल मुकंद अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हु के काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्वते प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वके अनकाम सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वके निजपहाम सर्वभुगता सर्वयुगता सर्वकर प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वगर्व अधीन सर्वसिमृतिन सर्वशास्त्रन सर्ववेद विचार दुष्ट हर्ता विश्वभर्ता आदरूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट

तेर ब्याद करे कई देन गोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेव न पावई शिव रुद्र अमुक चार। कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थकै थबै गुण चक्रत से भेसु मुख चार। आद आंजना मध्य जागो भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीय।

कहा कर्म को कर्म है, कहा भ्रम को नाश, कहा चितन की चेष्टा, कहा चेत प्रकाश दूभरा, कहा नियम संयम, कहा कहा

राम कपरदन शतरशिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विधंसन महक मथे दानव प्रहारन नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो श्री महकासुर मर्दन राम कपरदन आदृते दावरुडवंक बुबर्भुवंक पुजा फरंक तेज वरं लंकुड़िया फांध आयुध बांध सैम मर्दन काल असुरं अष्टायध चमक भूखण दमक अतिशत चमक।

विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृत्ति स्वर्ण प्रतिपालन पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरी जा जा उसी में खासन मर्दन विश्व विदन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन्नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकर्कण सर्वर वर्कण दुष्ट प्रधरकण।

दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सना है दुष्ट प्रदा है अर्थ गाहे दुख हरे गंजन कुमार अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंति जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर गहिली जो जचिली तोंद मते अष्टैल चमकण शस्त्र झमकण दामन दमकण आद बते डुग डुगी दमंग बाघ पवंग पुझा फरंग शुद्ध गति जय जाओ सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारा नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान अर्दन बिड़ाल वधे सरदार विवखन दुर्जन धरकन अतुलित अमरखन धर्म भुजे धूमराज विध्वंसन श्रुण चुनसन सोम्भ न पात्म सोम्भ मथे जय जय होसी मैं खास

सर्वं विचार जिम की हो आप करते पसार यद्यप अभूतान भय अनंत कहो यथा मंत्रण तांत करता करीम का आदर कृपाला भय अभूतान भय दयाल दाता दुरंदुक दुग राज्य ने

कई मूढ़ पद्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई गल कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभु एक रूप द्वा काल खाए अंश जि तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्व अनाथ सब रोग सोग ते रहत रूप अनभ अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना तल जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक अहम जय सत्र मैत्र दो एक सार अच्छा स्वरूप

जाज्य शत्रु मित्र निपुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह रंग रूप जय खेद भेद ने कर्म काल सब जीव जंत की करत पार ऊर्ध्वं बृहत्।

जह नेत नेत निस्दिन उशरांत पायो न जाय जह पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कूट इंद्र जय पान हार कई कूट रुद्र जुगिया दुआ।

दीनन की प्रतिपाल करा निशांतु बार गनी मन गारा पाच पशु नगनार नाध सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल के निक्रम विचार दीन दयाल दया निर्दोखत देखत है पर दीद न हार दाद है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल लार खंडा खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम के प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद बीज कतेव अभेद उचार रोज ही राज गुरुगत राजिक रोग रुहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान।

पद्धति युकेन श्री पद्मा पद पाई आद अनंत अगाध अद्वैक्सु भूत भविक भवान अभ अंतवीन अनातम आप अदाग अदु

लोग अछिद्र अक्षय है, लोग अनके करता हरता, जल में थल में भरता प्रभ है। दीन दयाल दया कर त्रिपत, सुंदर श्री पद्मापति है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न पोह न भय है। देह विहीन स्नेह सबूत नेह विरक्त अगेह अक्षय है। जान को दीत अजान को दीत, जमीन को दीत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध, सुंदर श्री पद्मा पतला है। रोगन ते अर्थोगन ते जल जोगन ते भव भांज बचावे। सत्र अनेक चलावत घाव तऊ, तन एक

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्रधारियों के चलैया माँ सत्रण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया उसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। योध के जितैया विरोध के मिटैया

अरब के अरबी आराधा तेरे नाम है। फरागे फिरंगे मन कंधारी गुरे सी जान, पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मघेले तेरी मन सो तपस्या कर, दृढ़ तिलंगी पहचान धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है।

और कहूँ पे न दीन साद अधीन कहियत है। पाइयन अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे चीटी की चिंगार पहले सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते सस राशि किरे सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है।

अथवा विनाशी परम पुराण प्रकाशी महारूप के राशि है अनासी गय गमानिया जंत्रु न जात जाके बाबू न मायता की पूरण प्रभा की सुछटा कह अन मानिया तेजु को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया तेजू को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है के रूपों को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है कैश विनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल के काल के सत्रण के साल है के मित्रण को पोखत है के वृद्धता की वासी है जोगों को जंत्र है के तेजों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बात है के बुद्ध के घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को परण है के अब

हेंगुला हिमा लगावे हा बसी हलब भी दिहावे पूर्वी न पार पावे असाते अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाथ अदवा विनाशी है अंजन भीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है।

के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के शीर कहती शिरावद छाज कहती छतरा नेर छपा कर कहती छप कालिंद्री के कुल के हंसी सिहारूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली साधो सिंध रूल के पारा सी पलाऊ गढ़ गरूपा कैसी रामपुर सूरा सी सुरंगा बाढ़नी के रही चूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के पटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीता सी सुरंगाबाद नी कै सुहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मुहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी गोर गखरी गर्दाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरा पलाऊ काम।

से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

सोई थीसी जो तू दहे सोई हाँ पाए रहाव सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर

न होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो। आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दे करिय। सब बैरन को आज संघरिय,

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सेव गुण।

काहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आ जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता, जे अस दुजताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी।

0: आके लख करोड़ सच्चे सप्ताह सच्चे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी की दृष्टि पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी वडेजा वड्डा नाम वड्डी वडेजा सचनिया वड्डी वडेजा नहीं चलता।

सतगुरु पुटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसन देसे ते।